0: रेंज मेला में जम्मै दिन आपको पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जम्मै लिएर जानुहोस् जम्मै वैल्युएशन जम्मै कैश डिस्काउंट
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 16 गते सम्म
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम शहीद गेट गुराही दाम
3: संपर्क फोन 082-562-423 संपर्क मोबाइल नंबर 98578-30151 98478-33133 र 98686-37244

वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: कोकोनट कोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुरी।

0: नमस्कार, म गायिका मान्डवी त्रिपाठी। तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: कलकत्ते कहीं यू के मेरे बांधी आयो फेरी हमी मज मारियो अनि घर दैलो में रोज मुक्तान अनि म अविनाश प्राथ मैं बाजू जैन दिला।

तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जरान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड

0: ओरेंज मेलामा झ्यामै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ झ्यामै लिएर जानुहोस्। झ्यामै भ्यालुएसन, झ्यामै क्याश डिस्काउन्ट।
1: एक्सटेन्स डेट यही असार 4 गते देखि 16 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इन्जिनियरिङ बजाज शोरूम, सही गेट गुराही दाम।
3: सम्पर्क फोन 082562423। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98578301, 98478333 र 98686342044।
4: घुम जाई धार पानी कार्यक्रम में उपस्थिति लाग हार्दिक अनुरोध। धार्मिक पुरातात्विक प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ओ विश्व का ध्यान त्रिशूल रलक मंदिर का रूप में प्रसिद्ध घोराई उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 5 धारपानी स्थित पांडवेश्वर महादेव मंदिर में लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्रालय, पर्यटन विकास परिषद बुटल का आयोजना ओ स्थानीय संघ संस्थाओं का सहकारी में यह मिति 2083 असार 13 गते शनिवार सम्पन्न कर्जिना घुम जाई धारपानी कार्यक्रम में सक्कु झाइन लाग उपस्थिति लाग अनुरोध कर चाहटी। संचालन कर्जिना कार्यक्रम परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी ओ नाच प्रदर्शन, मावी स्तरीय लोक नृत्य प्रदर्शन, स्थानीय उत्पादन प्रदर्शन ओ रैथाने परिकार उत्सव। कार्यक्रममा सहभागी बनी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरी आयोजक लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, पर्यटन विकास परिषद बुटोल रूपन्देही।

0: वाई नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाई नेट अब सब कनेक्टेड
1: नेपाली जूता घर
2: राप्ती अंचल के सभी भन्दा ठूलो जूता चप्पल को शानदार घर
1: नेपाली जूता घर हामी कहाँ नेपालका 10 भन्दा बढी ब्रान्ड का आकर्षक जूता चप्पलहरू सीमित अवधि का लागि 10% देखि 50% सम्म बम्पर छूट
2: अब ढिला नगर्नुहोस् आफूलाई मन पर्ने जूता आफै छान्नुहोस्
1: स्वदेशी उत्पादन को प्रवर्धन गरौ स्थान सिटी प्लाजा होटल को उत्तर पट्टी थारू गल्ली भुराही दाङ
2: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98577146।

0: एक्सचेंज मेला में झ्यामै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ झ्यामै लिएर जानुहोस्। झ्यामै वैल्युएशन, झ्यामै क्याश डिस्काउंट।
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 16 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम, सही गेट गुराही दाम।
3: संपर्क फोन 082-562-4323। संपर्क मोबाइल नंबर 98-578-30151, 98-478-33133 र 98-686-37244।
4: घुम जाई धारपानी कार्यक्रम में उपस्थिति लाग हार्दिक अनुरोध। धार्मिक पुरातात्विक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ओ विश्व का ध्यान त्रिशूल रलक मंदिर का रूप में प्रसिद्ध घोराई उपमहानगर पालिका वड़ा नंबर 5 धारपानी स्थित पांडवेश्वर महादेव मंदिर में लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्रालय, पर्यटन विकास परिषद बुटल का आयोजना ओ स्थानीय संघ संस्थाओं का नक सहकारी में यह मिति 2083 असार 13 गते शनिवार सम्पन्न कर्जिना घुम जाई धारपानी कार्यक्रम में सक्कु झाइन लाग उपस्थिति लाग अनुरोध कर चाहटी। संचालन कर्जिना कार्यक्रम परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी ओ नाच प्रदर्शन, मावी स्तरीय लोक नृत्य प्रदर्शन, स्थानीय उत्पादन प्रदर्शन ओ रैथाने परिकार उत्सव। कार्यक्रम में सहभागी बनी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन करी आयोजक लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्रालय, पर्यटन विकास परिषद बुटोल रूपन्देही।

0: मध्य पश्चिम जान ज्याक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक ती मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दाङ फोन नम्बर 082-585-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्निङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा, साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-585-218।

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराईदांग में भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिंदी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने तो मालिक हम तो भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
3: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
5: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।